मेरा जो पिंड सतसा सब कुछ है तेरा। माणा ने माणे तू तने तेरा परवासा बिन साचे अंतिक है तो जानू काचा।

जियो तुमरी कृपा ते तुद पछाणा तुमरी ओट तू है मेरा माणा तू बिन दूजा और न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो तू बिन दूजा और न कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो क्या कहिए किस आस सुनाइए जो कहना सो प्रभ जी पास सब कुछ किता तेरा वरते सदा सदा तेरी आस जी दे वड्याई ता तेरी वड्याई

जन को सब अपने का तान जो तू करे करावे स्वामी सा मतलब परवा चरण शरण हम अनाथ ना थकन अपनी कृपा करे चल कमल नानक आरा दे किस दिन आम के पत परमेश्वर गत नारायण तन पाल साखी।

हलते पलते प्रभाव से हुए कार्य हुए तले पूरे हर नाम जब सुख सहजे हर नाम जब सुख सहजे मज्जन हो तो साधु तुरे आवण जान रहे थित पाई जल मरण के मिटे वसूरे गुरु नारायण दाई गुरु गुर सच्चा सिद्धनहार गुर तुठे सब कुछ पाया जन मानस सब बनिहार हर गुण गाओ साफ सफाई हर गुण गाओ साफ सफाई मन तिंदे।

कर्म का अनुसमरत है करते, मैं तुझ बिन अवर न कोई, तुझ आपे शिष्ट से जिया आपे कोई। सब इको

0: You are listening to SikhNet Pio, broadcasting live Gurbani Kirtan 24 hours a day from around the world.
1: Gauri, Gambhir Prakriti da Raag hai. Vilak di Atma, Kirpa di Jaachna kardi hai. Te aape di khoj kardi hai. Is layi, ise raag vich, Guru Sahiban ne man, mat, बुद्धि आत्मा मौत मुक्ति आदि गंभीर विषयां विच गुरबाणी उच्चारण कीती। श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच सब तो वध बाणी इसे ही राग विच है। सुखमनी साहिब अते बावन अखरी जीवन दे सारे ही मतां दा तत् दर्शाउंदियां हन। भगत कबीर जी दी सब तो वध बाणी इसे राग विच है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा फरमान है, गौड़ी राग सुलखनी ये खसमें चित करे, पाने चले सतगुरु का ऐसा सिगार करे। गौड़ी दिया बारह वनगियां श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विच हन। जो दो शब्द हुण आप सरवण करोगे उन्हां विच गौड़ी दे जो सुर लगाए गए हन वो हन ऋषभ अते धैवत कोमल अते बाकी सारे शुद्ध स्वर। गायन समा रात दा प्रथम पहर पहला शब्द सरवण करो भाई गुरदेव सिंह खालसा जी पासों। शब्द दे बोल हन, गौड़ी राग सुलखनी जे खसमें चित करे। दूजा शब्द है प्रोफेसर हरचंद सिंह जी दा गाया होया। बोल हन, थिर कर बैसहु हर जन प्यारे सतगुर तुमरे काज सवारे। पहला शब्द गौड़ी राग सुलखनी जे खसमें चित करे।

तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श ले हर भावे। हम अपराधी राखे गुरसंगति, उपदेश दियो हर नाम छड़ावे।

हम जैसे अपराधी अगर कोई राखे, जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ा। तू गुर पिता, तू है गुर माता, तू गुर

अशोक है, अकर्म है, अपर्म है। वाहे गुरु अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है। अजीत है, अपीत है, अबा है, अगा है, अमान है,

राग गौड़ी बैरागण विच ऋषभ धैवत कोमल दोवें निषाद अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस राग विच गंधार ते पंचम वर्जित हैं। इस दी जाति औड़व वादी ऋषभ संवादी धैवत अते समा सवेर दा है। मैं बंजारन राम की शब्द दा गायन कर रहे हैं प्रोफेसर करतार सिंह।

राग सोरठ वाणी भगत रविदास जी की। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे। ओ लॉर्ड इफ यू विल नॉट ब्रेक विद मी देन आई विल नॉट ब्रेक विद यू। जो तुम गिरवर तो हम मोरा। इफ यू आर द माउंटेन लॉर्ड देन आई एम द पीकॉक। जो तुम चांद तो हम पहे हैं चकोरा। इफ यू आर द मून देन आई एम द पार्ट्रिज इन लव विद इट। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे हैं। तुम स्यों तोर कवन स्यों जोरे। ओ लॉर्ड इफ यू विल नॉट ब्रेक विद मी देन आई विल नॉट ब्रेक विद यू। फॉर इफ आई वर टू ब्रेक विद यू विद होम वुड आई देन जॉइन। जो तुम दीवरा तो हम बाती। जो तुम तीरथ तो हम जाती। इफ यू आर द लैम्प देन आई एम द विक। इफ यू आर द सेक्रेट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज देन आई एम द पिलग्रिम। साची प्रीत हम तुम से जोरी। तुम से अवर संग तोरी। आई एम जॉइंड इन ट्रू लव विद यू ओ लॉर्ड। आई एम जॉइंड विद यू एंड आई हैव ब्रोकन विद ऑल अदर्स। जह जह जाऊं तहां तेरी सेवा। तुम सो ठाकुर और ना देवा। वेर एवर आई गो देयर आई सर्व यू। देयर इज नो अदर लॉर्ड मास्टर देन यू ओ डिवाइन लॉर्ड। तुमरे भजन कटे जम फांसा। भगत हेत गावे रविदासा। मेडिटेटिंग वाइब्रेटिंग अपॉन यू द नूज ऑफ डेथ इज कट अवे। टू अटेन डिवोशनल वर्शिप रविदास सिंग्स टू यू ओ मास्टर। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे। तुम स्यों तोर कवन स्यों जोरे। राग सोरठ ताल छोटी तीन ताल 16 बीट्स।

साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज गौड़ी चेती महला पहला दा ए शब्द जो आप जी ने सरवण कीता है, इस शब्द के द्वारा साड़ी जिंदगी दा जो एक सफर है अते ओ सफर दी मंजिल नूं असीं जो खो चुके हाँ उस दी बाबत सानू महाराज एक बड़ी तकड़ी जोल्ट दे के सानू वापस जगा रहे हैं। सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज एक पंक्ति दे विच बयान करते हैं कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। वो जीवन नूं एक यात्रा आखते हैं अते आखते हैं कि ए सफल हो गई है। इमेजिन करो कि वो किस किस्म की थ्रिल होएगी, किस किस्म का प्लेजर होएगा, किस किस्म की स्टेट ऑफ माइंड होएगी जिस दे विच एक चेतना ए अपने जीवन च खुद आख सके, उसनू जी सके, उसनू इम्बाइब कर सके कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। हाउ मैनी ऑफ अस कैन क्लेम दिस कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। हाउ मैनी इनफैक्ट सानू तो यह भी नहीं पता कि जीवन की कोई यात्रा भी है। सफल होना तो बहुत दूर की गल है, सानू यह भी नहीं पता कि असी अपने जीवन की यात्रा च जा किधर नू रहे हैं, मंजिल वल नू या मंजिल तो दूर। बाबा जी ने अपनी बाणी दे विच एक पंक्ति उचारण कीती है जिथे वो आखदे हन असी मंजिल दे करीब टिकी जाना, असी मंजिल तो बहुत ज्यादा डिस्टेंट हो गए हैं, बहुत ज्यादा दूर चले गए। पंक्ति सुनने वाली है, कहंदे हन साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करीजे, तावत ताए तावे प्रीत माया, लख कोसन को विथ दीजे। कहिंदे यात्रा सफल ते की करनी, यात्रा सफल उदों हुंदी है जदों यात्रा दी जो डेस्टिनेशन है उत्थे पहुंच जाया जाए, उदों जो यात्रा कंप्लीट हो जाती है, सफल हो जाती है। पर जे यात्रा नालों उसकी मंजिल नालों उसके डेस्टिनेशन नालों जो पाड़ है, गैप है, डिस्टेंस है, दूरी है, वधदी ही जाए, वधदी ही जाए, वधदी ही जाए, इसका अर्थ यह होया कि यात्रु नूं यह नहीं पता कि वह जा किधर नूं रहा है। बाबा जी ने बाणी दे विच एक जगह आख्या है साडे मतलब कि तुहाडी हालत यह है कि तुहानूं यह पता नहीं तुसीं किधरों आ रहे हो और किधर नू जा रहे हो, बस ये आख रहे हो आई एम वेरी बिजी, आई डू नॉट हैव टाइम। कोई पूछे तो कर की रहे हो, दैट आई डोंट नो। जा किधर रहे हो, दैट आई डोंट नो, बट आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। किधर जा रहे हो इसका पता नहीं, किधरों आ रहे हो इसका कोई पता नहीं। महाराज जी अपनी बाणी की पंक्ति आख दे, कहते हैं

नैनों पे ठाकुर का रंग, साध संग बिन से सब संग, चरण चलो मार्ग गोविंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद।

0: आशा मरना चौथा तुम करता से आज मेरा साइन जो तो पाए सोई तीसी जो तो दे सोई हम पाई कराओ सब तेरी तो समझ जाए जिसम कृपा करे ते नाम रतन पाया गुरु को आया सुधाव छोड़ा मिलाया तुंदर उस तुरी माए तुझी का बिठा कभी ना जी जन सब तेरा खेल वजोग मिल विछड़ा सजोगी मिल जिसनु तू जनाए सोई जन जाने अर्गुन सदी आप खाने जिन्हार सेवा तू पाया सहजे अरना समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए दुबंधु जा वरना कोई तू कर कर वेखे जाने सोई जन नान गुण प्रगट होया समाला पहला
1: तिसरवड़े पहले निवासा पानी पावक तिने किया पंकज मोह पगने चाले हम देखा तै डूबले मन एक न चेस मुड़।

0: मांगदेवरिया गोविंद की त्रिवरिया अवर काज करे कित न काम मिल सास संगत भज के वल नाम सरन राम लाभ भोजन तरन के जन्म था जातर माया के कराओ
1: जब तब संयम तरम ना कमाया सेवा सा न जान्या हराया कौ नानक

कह सदा शिव निरंकार का चिंत नहीं भय। आप अपनी बुद्ध देते वर्णन पिन पिन देते तुम्हारा लखाना जाय पसारा कह भी सदा प्रथम संसारा एक रूप रूप स्वरूप रंग राव के गोपा अंड चेर से तिशकिनी कुछ खान बो राय दिनी राजा हो बैठा कौन सिमट प्यो शंकर खेटा सगली शिष्य काय चंबो आजुगा सरु संयंबो और अच्छा मेरी तुम करो सिख वार असिख संगरो दुश्चिंत उठवा थुट पाता सकल कलेश करुणन खाता जे अस्तुता सरणी परे तिनके दुष्ट दुख है मरे पुरख जमन पाक मरे त्यार है तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताकि काल निकट नहीं आया रक्षा हो तय सब काला दुष्ट निष्ट ने तत्काला कृपा दृष्टम जान हरो ताके ताक तरको हर हो सब होई दुष्ट है अच्छा सके न कोई।

31 निर्धारित रागां विच गुरबाणी दे कीर्तन तो बाद पेश है संत बाबा सुच्चा सिंह जी दा उह भाषण जो उन्हां ने 5 दिन तक चलन वाले अदुत्ती गुरमत संगीत सम्मेलन दे समाप्त होने वेले दूर दूर तो लखां दी तादाद विच आईयां संगतां दा धन्नवाद करदे होया कीता संत बाबा सुच्चा सिंह जी।

खंडे खंड प्रचंड पार पूर्ण प्रेम की प्रीत सवार है। पार न पाए सके पद्मपति

राग गौड़ी चेती विच ऋषभ धैवत कोमल दोवे मध्यम अते बाकी सुर शुद्ध लगते हैं। इस दे आरोह विच गंधार सुर वर्जित है। इस दी जाति शाड़व संपूर्ण वादी पंचम संवादी षड़ज अते समा शाम दा है। इस राग विच मन राम नाम गुण गाइए शब्द दा गायन कर रहे हन प्रोफेसर करतार सिंह।

एक कर्म छड़ के तो करोड़ा कर्म कर। भुखिया नु रोटी खुआ, जल छका, सेवा कर। पातशाह कहंदे ने तू एक कर्म छड़ के कई कर्म करेगा, जे नाम हिरदे विच नहीं वसिया नरकां दा बुआ जरूर वेखना पवेगा।